0: हांगकांग की शाम अपने मेजबान आबिद अली बेग के साथ। तावुन है होम अफेयर्स डिपार्टमेंट का।
1: अस्सलामु अलैकुम। इतवार की शाम है, आरटीएच के रेडियो 3 पर हम हाजिर हैं हांगकांग की शाम के साथ। ये महफिल चलती है हर इतवार की शाम आवाज दुनिया के खूबसूरत रंगों से सिर्फ आप।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अदील बरकी। आप सुन रहे हैं हांगकांग की शाम अपने मनचाहे मेजबान आबिद अली बेग के साथ।